की कुकुर आयो पेट को सिलाई पोखरा माखा मेरो अड़ी उसको दी गुलाबी काला मा हीरे मनी पत।

0: लस है मेबे फेबे मा रंगमाजे आरसीसी दिम बोरा चहरदिंग प्ले रखोर मा नग फारम मा असिम टमाटर की ट्रनेल मा सिंगबे सुर सिंगजेपल मुबा होले सिंगबे सुर मुसम ओम टंके सुर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सेग होई रोमा हुजुरी मी दिम फिटिंग सिंगबे अंतरराष्ट्रीय स्तरला जम्मनु सामान मा होलसेल मूल्यारी यंगबा असेम जिम स्तम्भ न बोरबारी ध्वनिला सुविधा न मुबा क्रयुर्नाले बजार कोर्ब आही नै रोमा सेगो बरो ओम टंकेश्वर इन्टरप्राइजेस धादिङ बेसी सुगम चोल्री सम्पर्क नम्बर चाहिँ 01052470 असेम 98511 87882 फोन सिन्जिम सेगो है रोमा
1: ओहो हैन के हो अझ हातमा सुनको औठी पनि
2: ल तलाई थाहा छैन मिलन टोलमा रहेको रोमन मोबाइल पसलमा मोबाइल किन्दा हरेक महिना सुनको औठी पाइन्छ नि
1: ए हो र त्यसो भए म पनि मोबाइल किन्दा गइहाले रोमन मोबाइल पसल धादिङ देसीमा
2: रोमन मोबाइल घडी पसल नीलकण्ठ नगरपालिका 3 धादिङ बेसी धादिङ हामी कहाँ मोबाइल तथा मोबाइलका सम्पूर्ण पार्टपुर्जा घडी रेडियो टिभी डिस होम आइरन चार्जर पंखा लगायत सम्पूर्ण घरायसी इलेक्ट्रिक सामानहरू बिक्री तथा मर्मत गरिन्छ
1: साथै किस्ता बन्दीमा हरेक ब्रान्डका मोबाइलहरू पाइनुको साथै पुरानो मोबाइलबाट नयाँ मोबाइल पनि साटिन्छ
2: बम्पर उपहारमा हरेक स्मार्टफोनको खरिदमा हरेक महिना सुनको औठी समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ
1: प्रोप्राइटर राम श्रेष्ठ सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98411 97913 र 98139159
3: तपाईँको सन्तुष्टि नै हाम्रो सन्तुष्टि हो
4: अब रंग फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माइथे नला विश्वासी चमक बसुगो धन्यवाद सहित प्रार्थना लस्युगो नला विश्वासी चमक लस्युगो जय मसी तथा नमस्कार स्पार्क माइथेतला अंक 1-3 रंग निदा स्वागत मुला नला वियोग तामाङ तिनीला चु कार्यक्रमला शीर्षक मुला धन्यवाद सहित प्रार्थना लसुगो गाला विश्वासी चमक बसिखाऊ तिनी गा रङ दिदेन प्रार्थना लामा याङसी थान्दोला सेम वृत्तिला बारिदी तिगै तम जुबारी से मुला याङला प्रार्थना कदे हाइमन्दमन आनन्द दिन धन्यवाद त्रिङबा तिम तादोला एक थेस नुलकी 5:16-18 सदन ताङसी च्यु पछि सदन प्रार्थना लौ दुःख सुख जस्तन तसै धन्यवाद दिनको तिग दिषम ख्रिस यसुदेन छ्याम गिक तबा एनी गदिसे चुराङबा लगै बिसी परमेश्वर से विवा मुला जब याङ प्रार्थना लवा समश्री ध्यान केन्द्रित लामुला चुसे याङ दा नङ्याम दुखा पिन मुला देन दुखी तुलाई दिम मुला तसै जब याङला ध्यान चु समस्या ज्ञाम याङ दा छुटकारा पिनमा परमेश्वर दा क्षमा धरी तामुला थेरै याङला दुखा धन्यवाद री परिणत तामुला यदि रङसी हाजी भए तामला लागिरी प्रार्थना लसुजी थेन्दे प्रार्थना लिच्छ रङ दाते दोना नोन थे बारे चिन्तित हुसुला विषम चुल अर्थ चु हिनबागी रङसी दाते दोना थे परिस्थितिला हेर्छ लाभ्री लसुला रे फिलिपी 4:7 थेन्जे समझले नोन पङबरी अहमसेला परमेश्वरला शक्ति छे एनी गदेला तिङ देन एनी गदेला सेमदा यसरी रक्ष लाला जब याङ रङला तिङ्री विश्वास लाला कि परमेश्वर से ज्ञानवान मुसुला देन रोसे याङदा याङला अनुरोध पुरा लाभरी छोना माया नसुरमला जब याङसे नक्ष महसुस लजीबा चिन्ता शान्ति से प्रतिस्पादन लामुला एक पत्रुस 5:7 एनी गदेला बेनन मोबो बोमो पन्सो दसुम इन्गो तिग्द विषम रोसे एनी गदेला वास्ता लसुमुला याङसे याङला रुइला बोज कादे राङमग्याम हडप्तोला थेन दे थेनी गदेला दा परमेश्वरला बम्री थान्दोला याङला अब परमेश्वरला लागिर याङला प्रार्थना चुराङबा तादोला हे परमेश्वर गादा चिन्ता ग्लाब्दाबा ताम दारेम राङला बिम्बा नचुदा राङला हम्बा यारी पिन्बा मुला गादा थाहा मुला दारेम राङसे गाला लागिरी चुला हेरचा लाचुला एक कुरान्थी पाँच धैल साध तिक दबसम याङ विश्वास ग्याम ब्रामुला नाङबा ताम्ला आधारी आहिन्बा यद्यपि याङ से प्रार्थना लवबिच याङला मिसे नाङबरी हम्बा परिणाम गति योनन नाङबरी अहम याङ से डाङबरी आवश्यक मुलाकि परमेश्वर से माया लब गरिदा हेरचा लबरी हाइमा दमन विश्वास योग्य मुसुला देन रोसे रङदा लानन माया लसुमुला थेन्डे दारेम याङ जेखेन्थे छ्यानला लागिरी ग्रन्जीव मुला जब याङला प्रार्थनाला जवाफ पिन्ला प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी निन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रङला केही प्रतिक्रिया मुसम 01661940 री सम्पर्क लसुगो हस्त त्यो समय रि बिदा ताजी रङनी छङमदानु जयमसी नमस्कार। अब रङ फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो याङला परमेश्वर जबा आबा हिन्बमुला जयमसी तथा नमस्कार स्पार्क माई फेथला स्वागत मुला ना बियोग तामाङ याङला परमेश्वर ज्याबा आबा मुसुला एक युहन्ना तिनला एक अध्याय च्यागो आवश्य याङदा हरङबा किसिम से प्रेम लसुबा मुला कि याङला सन्तान बिसी पिगाबगदे हिन्बा थेहेन्दे साचिन एन हिन्बा चु पछि बिमुला च्यागो आवश्य याङदा हरङबा किसिमला प्रेम लसुबा

0: एउटा सके अर्को काम आइलागिहाल्ने, स्वास्थ्य मस्तमा कहाँ गएर ल्याउने होला।
1: अहिलेको जमानामा पनि टेन्सन लिने हो र अङ्कल, अन्त कहीँ जानु पर्दैन, धादिङ बेसी स्थित धादिङ अस्पतालको पछाडि सिद्धार्थ ब्रेल स्टिल युबीबीसी एन्ड अल्मुनियम हाउस छँदैछ नि। त्यहाँ त आइएसओ नेपाल गुणस्तर मान्यता प्राप्त युपीबीसी अल्मुनियमका झ्याल ढोका बनाउनुका साथै फलाम स्टिल सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ नि। युपीबीसी र अल्मुनियमका सामान अन्तभन्दा होलसेल मूल्यमा पनि पाइन्छ।
0: ए त्यसो भए सम्पर्क नम्बर भन त, म आजै गइहाल्छु। 1227 को कुरा सुन्दिन म।
1: ल टिप्नुहोस् प्रोपाइटर वीरबहादुर श्रेष्ठको लागि 98340-97437 र 010-590-093 सम्पर्क गर्नुहोला नि।
2: हजुर, विगत 10 वर्षदेखि तपाईँहरूकै सेवामा तत्पर सिद्धार्थ ग्रिल स्टिल युपीबीसी एन्ड अल्युमिनियम हाउस नीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 धादिङ अस्पतालको पछाडि, प्रोपाइटर वीरबहादुर श्रेष्ठ। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98340-057-437।
3: शरीर फुलेर जागुता जस्तो भएर बसेर उठ्न नमिल्ने, उठेर बस्न नमिल्ने भएको थियो। हस्पिटलको दबाई खाँदा खाँदै म मर्ने र बच्नेको ठेगानै थिएन कि। वैदिकमा औषधि हुन्छ अरे भन्ने सुनेर म वैदिकमा गएँ। 15 दिनको दबाई खानुहोस्, त्यहाँबाट अनि विचार हुन्छ भनेर भन्नुभयो डाक्टरले। अनि दबाई लिएर आए, जमानी फर्केछ पहिला जस्तो थियो। मलाई 16 वर्षको उमेर जस्तो लागिराखेको छ अहिले भने जस्तो। त्यो हाम्रो नेपालको जडीबुटीबाट उत्पादन भएको चिज हो, त्यसलाई कसैले पनि हेलातो नगरौँ।
4: पहिला मलाई रिसर्च लागेन, यस्तो यस्तो हस्पिटलको दबाईले त सन्चन हो नि, त्यस्तो आयुर्वेदिक दबाईले के सन्चन हुन्छ र जस्तो लाग्छ मलाई। बाबाले जान्छ भन्दा नि खै मलाई त हुन्न होला जस्तो लाग्छ, अब यत्रो यत्रो मेडिसिन औषधिले त नहुने, जडीबुटीले के होला र भन्ने सोचे। पछि बाबाले त्यहाँदेखि एकचोटि विचार गर्छु खान्छु के हुन्छ भन्नुभयो, अनि गएर ल्याउनु भयो, खानुभयो, पछि सन्चन हुँदा हामी त छक्कै गऱ्यौँ।
5: वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली लाइन्स चोक नारायणगढ, मोबाइल 98550-50934, ट्याङ्ला चोक किर्तिपुर काठमाडौँ 98512-40934।
6: अब रङ फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो। रङ लमन परिवर्तन लसुगो जय मसी तथा नमस्कार स्पार्क माई फेथला स्वागत मुला ना बियोग तामाङ रङला सेम परिवर्तन लसुगो नला विश्वासित समक बबरी हसुगो तिगा तिनी रङला लुइला हाजीबाई ग्लाम मुला जहाँ रङला छुटकारा तोला तिगा थेरी हाजीबाई विशेष प्रार्थना अनुरोध मुला जो जवाब रङ दाते दोना एम नाइसुगा मुला तिनी रङ दिदा रङला समस्या यम वास्तविक छुटकारा दिन रङला प्रार्थनाला जवाफ याङला लागि रङसे लाभ्री हम्बा बेनन भन्दा महत्वपूर्ण ताम उन्ला रोमी 12:2 जो संसार धासरे अप्राउ तासै रङला सिमरे छार तसी पुरान रूपसे परिवर्तन ताउ देन परमेश्वरला जवाब भन योग्य देन सिद्ध इच्छा तिगा हिम्बा थिए से बढी हम्ला रङ रूपान्तरित तगाई विवा परमेश्वरलाई इच्छा हिम्बा तासै रूपान्तरित तबला अर्थ तिगा हिम्बा चुरित चमत्कारिक रूपसी रूब्री यागर्की सेग्यम अर्को सेरी परिवर्तन तबा समावेश मुला रूपान्तरणला यागर्की उदाहरण विवा यागर्की झुसिले किरासे हरङ लसी रङदा जेव पुतली तिरा पुताली रि रूपान्तरण तामुला विवा हिम्बा चु बाइबल पदसे रङदा चु रूपान्तरण हरङलसी याङसेला बिसी पङमुला याङसे लादोला विवा याङला सेम्दा नवीकरण लभ हिम्बा तेन याङसे याङला सेम्दा परमेश्वरला वसन रि ताबा प्रतिज्ञा गदेरे नवीकरण लभ हिम्बा याङसे थे प्रतिज्ञा गदे रङदान बारम्बार विदो मुला थेनी गदे ला बारेरी हाई मन्दमन सोस लस्युगो हेन्दे एनिगदे दा रङला सुङसे निरन्तर स्वीकार लस्युगो व्यवस्थाला चु पुस्तक एला तिसाघ्याम थलागो यहुसु 1:8 व्यवस्थाला चु पुस्तक एला तिसाघ्याम थलागो तसै थेफेरी यसे दिनसे ध्यान लावरी देन थेरे ब्रिबा बेनन ताम होसियारी छ्याम पालन लावरी देन एला ग्लानकार देवी ऐसे उन्नति लाला थेन्दे सफलता यंगला रंगला परिस्थिति ला बारिदी परमेश्वर ला प्रतिज्ञा ला विचार से रंगला सेमद निरंतर भर लसुगो चु बारम्बार लसुगो तिगताला विषम रंग अन अंत चु सत्य विवाह विशी विश्वस्तला थेन्दे थेलिच याकर्गी लानन अद्भुत देन चमत्कार ताम तला रूपांतरण तला परमेश्वर से रंगला लुईरी थे प्रतिज्ञा पूरा लाला जो परिणाम स्वरूप रंगला छुटकारा तला रंगला दत्तीला परिस्थिति तिगत तावन मूला विवाह बारे दी रंग से रंगला सेमद परमेश्वर दृष्टिकोण देन निरंतर नवीकरण लाभा साचिन महत्वपूर्ण मूला देन नियमित निरंतर आधारित थेरंग लाशुगो चेक पटक रंगला सेम परमेश्वर प्रतिज्ञा दिन दीक्षी तावानन रंग से रंगला परिस्थिति ज्याभाग्यमरी परिवर्तन ताबा मृंगबरी था निंदा दुई कुरान्थी नौ अध्याय आठ परमेश्वर से एनी गदे आशीष छोन मात्र पिनबरी हमला ताकि एनी गदे दिन हाइमा दमन नोन हरेक ताम छोन तागई तासै जब गेला लागिरी एनी गदे से छोन मात्र पिनबरी हमला जु परमेश्वर से लसुगो प्रतिज्ञा हिन्बा चुरी बारम्बार मनन लसुगो संसार ज्ञान रंगला दिमागी पुइबा नकारात्मक ताम गदे सट्टा चु विचार द रंगला सोचाइरी हाबी तबारिस पिन्सुगो जु चु रंगला लुरी मुक्ति याङबा ज्ञान हिन्बा याङसी सम्भव मुला विवा विश्वास मन्द फिर्क्याप्ला ताम बिराले याङला विजयला मानसिकता अपना लसुगो बाइबल से रंगला बारे तिगा बिमुला विवा ताम्रे विश्वास लबा छनोट लसुगो देन रंगला लुई विजय रि पैन ताबा सिगो प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी नेन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माइ फेथ कार्यक्रमला बारे रंगला केही प्रतिक्रिया मुसम 0166194600 रि सम्पर्क लसुगो हस्त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रङ्गी छङमदानु जयमसी नमस्कार
7: लस है मेबे फेबे मा रङमाजे आरसीसी दिम गोरा चहारा दिन प्रे रखोर मा नग फारम मा असिम टमाटर की टनेल मा सिंगबे सुर सिंगजेपल मुबा होले सिंगबे सुर मुसम ओम टंके सुर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सेगो होई रोमा हुजुरी मी दिम फिटिंग सिंगबे अंतरराष्ट्रीय स्तर ला जम्मनु सामान मा होलसेल मूल्यारी यंगबा असेम दिम सम्म न बोरबारी ढुवानीला सुविधा न मुबा क्रयुर्नाले बजार कोर्ब आही नै रोमा सेगो बरो ओम टंकेश्वर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सम्पर्क नम्बर चाहिँ 01052470 असेम 98511 87882 फोन सिन्जिम सेगो है रोमा
8: ओहो होइन के हो अझ हातमा सुनको औठी पनि
9: ल तलाई थाहा छैन मिलन टोलमा रहेको रोमन मोबाइल पसलमा मोबाइल किन्दा हरेक महिना सुनको औठी पाइन्छ नि
8: ए हो र त्यसो भए म पनि मोबाइल किन्न गइहाले रोमन मोबाइल पसल धादिङ बेसीमा
9: रोमन मोबाइल घडी पसल नीलकण्ठ नगरपालिका 3 धादिङ बेसी धादिङ हामी कहाँ मोबाइल तथा मोबाइलका सम्पूर्ण पार्टपुर्जा घडी रेडियो टिभी डिस होम आइरन चार्जर पंखा लगायत सम्पूर्ण घरायसी इलेक्ट्रिक सामानहरू बिक्री तथा मर्मत गरिन्छ
8: साथै किस्ता बन्दीमा हरेक ब्रान्डका मोबाइलहरू पाइनुको साथै पुरानो मोबाइलबाट नयाँ मोबाइल पनि साटिन्छ
9: बम्पर उपहारमा हरेक स्मार्टफोनको खरिदमा हरेक महिना सुनको औठी समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ
8: प्रोप्राइटर राम श्रेष्ठ सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98141 97 97 13 र 98139151
10: तपाईँको सन्तुष्टि नै हाम्रो सन्तुष्टि हो
6: अब रंग फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो तिनीङा रंग दिन यस्ताला उदाहरण बसी खामुला जयमसी तथा नमस्कार स्पार्क माई फेथला स्वागत मुला ना बियोग तामाङ तिनी गा रंग दिदेन एस्तर ला किताब केम तिगै ताम जुबरे से मुला जब एस्तर से गा छला पटक चु भयानक खबर थे ब मुला कि थेला बेनन यहुदी मी गदेदा नष्ट लब योजना शुभ मुला थेला प्रतिक्रिया तिगा मुबा थे दुईरी चुरांगमा रानी मुबा यद्यपि थे योनन रंगला खेप्पा ग्ले हानाङ यार्ची थेदा रोला लागिरी बिन्ती आलानी बरु थे उपवास देन प्रार्थना री निजी थेसी बेनन यहुदी गदे त चुपवास री छ्याम ताबरे अनुरोध लाची थेनी गदे लगातार सोम दिन दोना उपवास तिजी थे प्रार्थना कादे लाबरी विश्वास योग्य ताजी एस्तर चार अधेला पन्ध्र दिन सोरा तब एस्तर से मर्दकै कहाँ चुरहाङमा जवाब पुजे निसी सुसनरी रूपताबा जति बेनन यहुदी कदेदा नाला लाग्री उपवास शिवरी रूप लसुगो सोम दिन देन सोम मुन्से नु मि चाबासे चासुगो थेन दे क्वि थुङ्गो ना देन नाला चाकनी कदे नुन रङ कदे रङमन उबासिला थेलिचा कानुनला विरुद्धम ना ग्ले हनाई निला ना ग्ले हनाङ निला यदि नाला नास ताबा विषम चागै याङसे यस्ता लचु उदाहरण न्यान्दोला थेन दे जब याङदा याङला लुइरी हाजी बाई कठिन समस्याला बारी था तामुला याङसे योनन परमेश्वरला रो रिदोला स्यन्दो हाई हालाई ग्याम स्यन्दो हालाई ग्याम आहिन्बा याङसे रङला परिस्थिति रे विजय याङबरी हामला बिसी परमेश्वरला शक्ति ग्याम नोन याङसे लाभ थिदोला याङला प्राथमिकता समस्या रङ नोन समाधान लभ प्रयास लभला सट्टा परमेश्वरला उपस्थिति माइदोला अर्को घे छुरङबासे लाजी थेसे राजदा परमेश्वरला प्रेम रे प्रेम से प्रेम लजी थेसे थेला लागिरी भोज तयार लजी थेन दे नङ्गार पल्ट अर्को भोज चु याङसे लोकपाला लागिरी अर्को गेन पाठ हिम्बा मि गरेदा रङला व्यक्तिगत फाइदाला लागिरी प्रयोग लभा प्रयास लभला सट्टा याङसे थेनी गरेदा परमेश्वरला प्रेम लभरी नच बढापला दोला थेहेन्दे थेलित छ याङ दोबा ताम गादे भ्रीवाला लागिरी सही दुईला प्रतीक्षा लादोला यस्ता लागेला परिणाम स्वरूप ईश्वर यहुदी गदेदा भयानक मृत्यु ज्ञान सोना लावरी प्रतिज्ञा पिन्सुजी चु कथा से याङ द अनुसरण लावाला लागिरी याकर्की ज्ञान उदाहरण पिन्सुमुला चु पाली रङधन भरोसा आलानी थेसी राजारी भरोसा आलानी थेसी जेखिन ईश्वरी भरोसा थान्जी व्यवस्था 31 अध्यायला छ बोल्या दिन साहसी हिम्बा थेनी गदे छ्याम थाक्रङ थेहेन दे तरासी थालौ तिग द विषम परम प्रभु एनी गदे देन परमेश्वर नोन एनी गदे देन निशुला परमेश्वर से एनी गदेला हाईमा फ्रासिला अरे न मी फ्रासिला एस्तर से लव उबास थेला दिबाला प्रतीकात्मक अर्थ मुबा नचु हाइलन शक्तिशी लाबरी अहम थेन्दी जब थे मे गदे त उबासी बरी आग्रा लाजी थे थेनी गदे त विवान मुला चु थेराङ ताम आहिन्बा जुन याङ रङ से पुरा लाबरी हमला याङ द याङला लागरी हस्तक्षेप लाबरी परमेश्वरला शक्ति तोला अन्यथा याङला अवस्था निराशाजनक मुला भजन संग्रह 100 अध्यायला 5 ठिक द विषम परम प्रभु भलो मुसुला थेन दे परमेश्वरला करुणा हाय मदमन चिमुला परमेश्वरला विश्वास नियता पुस्ता ज्ञान पुस्ता दोना हाय मदमन चिमुला सुरुङबासे रङला लानन रङबा दुई रङला समस्या केन्द्र आलानी रेउ थेसे रङला दुई परमेश्वर रङला श्यामरी केन्द्र लजी आवश्यकताला दुईरी थेसे परमेश्वर से रङमा शक्तिला रूपरी विश्वास लजी समस्या हामा याङसी एन थेरङमान लादोला प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी नेन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारेरी रङला केही प्रतिक्रिया मुसम 01661946400 रि सम्पर्क लसुगो हस्त त्यो समय रि बिदा दाजी रङनी छङमदानु जयमसी नमस्कार अब रङ फेसुमुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बस्युगो। एनिगजी थिनिगरिला फल ग्याम मुसेला जयमसी तथा नमस्कार स्पार्क माई थेतला स्वागत मुला ना बियोग तामाङ परमेश्वरला साचो अगमवक्ता देन झुटा अगमवक्ता हरङलासी छुटताले हमला मती 7:15 झुटा अगमवक्तका दिग्याम होसियार च्यु जो एनिगा देला भेडला भेसी हामुला तसै नङपटी चाहिँ लोङबसी बुवासका दि राङबाउ तामुला येसुजी याङदा सतरी ज्याबा मृङबा मेगा दिल्छ्याम बजदीबारी चेतवानी पिन्ब मुस्युला तसै राङला रुप्री थेनिगादी लोभी तामुला थेनी थेनिगादी से स्याङदोला स्याङदोला फाइदा रेमुला थेनिगादी मिगा दिदा राङला स्वार्थना लागिरी प्रयोग लामुला याङला लुरी विनाश बाबुरे अनुमति पिन्बा भन्दा नाछा याङ थे मिगा दिदा हिम्बा बिसी हाल चाहिँ थाहा याङला यसुजे सुङजी कि थेनिगादी भेडला भेसी हाला थेनिगादी से नन्द विश्वास बिबारी प्रयास लाला कि थेनिगादे प्रेमिलु देन दाइला विश्वासका दे हिम्बा थेनिगादेला वास्तविक मनासै पत्ता लगाबारी याङसी सतारी नमग्याम माइदोला मती 7:16-17 थेनिगादेला फालग्याम एनिगादेसे थेनिगादे दङसेला तिगा ब्रुग्याम अङ्गुर अर्थात् सिउडीग्याम अन्जिर थुङमुला ओम थेराङलासी हरेक जब दोंसी जब फल पिन्मुला तसै खराब दोंसी खराब फल पिन्मुला यागर्गी बिबा मुला शब्द भन्दा जेसे गेन स्वर्य पाङमुला बेनन सही शब्द गदे थेनी गदिला सुङ्ग्याम न्यानबारी थाम हामला थे शब्द ग्याम थेनी गदे से याङला थेनी गदिला मना सही जब मुला बिसी विश्वस्त शुभ प्रयास लाला थेनी गदिला बारे सत्य सेवाला लागरी याङसी थेनी गदे से बिबा मुबा भन्दा एन थेनी गदेसे तिग लाजिब मुला बिसी अवलोकन लादोला मती 6:18 जब तोङसे अजब फल फलबारी अहम नामी अजब तोङसे जब फल फलबलाबरी अहम हमला थेनी गदेला गेगादि ग्याम तिगा रङसे थेनी गदेता स्यान्दोला भलाइला लागिर निस्वार्थ ख्याजिबा रङसु मुला वा थेनी गदे रङला बिमा बिबाला लागिरी निरन्तर स्यान्दो मिगा दिँदा प्रयोग लाजिब मुला तिगा थेनी गदेला फल सिगो तिगा चु जब फल हिम्बा थे लिच्छा रङसी थाहा याङला कि चु मिधेन सङ्गत लासेला कि आलासेला मिना वास्तविक तिङला बारेरी सेवाला लागिरी थेनी गदेला फल ला जाज लबा जब तरिका हिम्बा थेनी गदे सुङसी याकर्गी ताम्पाङबुरी हाम्बा तसै थेनी गदेला गेरी थेनी गदे लानन फरक तरिका से तिकै लाबरी हाम्ला थेनी गदे गेसे थेनी गदे लाबा बिम्ब बिबा बारी सत्य पाङला थेहेन्दे थेनी गदेला मनसै तिगा हिम्बा बिसी याङसे निला मती 7:19-20 जब फल अलासेला जम्मन दोङ थासी कुर्ला थेहेन्दे मेरी प्याङला चुरङलासी थे अगमक्त गरिदा थेनी गदेला फल ग्याम होसेला मिगदेसे राङदा तिगा बिमुला बिसी राङला मूर्ख सोभरी थापिन्छुगो थेनी गदेला गेदा नै ग्याम च्याप्छुगो देन पत्ता लगाइदियो कि थेनी गदेसे लाजिब गे साक्षिन परमेश्वरला मायाला अभिव्यक्ति हिम्बा वा राङला स्वार्थी फाइदा लागिरी स्याङदो गदेदा प्रयोग लाभ स्वार्थी इच्छा हिम्बा प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी नेन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारेरी रङला केही प्रतिक्रिया मुसम 0166194600 रि सम्पर्क लस्युगो हस्त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रङनी छङमदानु जयमसी नमस्कार अब रङ फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बस्युगो सैतानला झुट री विश्वास अलैसुगो लासुगो तिगरंग दत्ते लानन निदास यम गोशुल मुला जय मसी तथा नमस्कार स्पार्क माय थेतला स्वागत मुला ना बियोग तामंग तिगरंग से रंगला लुइला महत्वपूर्ण ग्लारी परमेश्वरला आशा लसुवा छुटकारा बाबरी रंगसुबारे शैतान से सेम मुलागी रंगसी सोच लसुगो कि परमेश्वर से रंगला साचिन माया आला मुला कि परमेश्वर रंगला सजाय पिन्छु मुला वा तिगा परमेश्वर द रंगला परिस्थितिला सचिन वास्ता आरे थे हाजी भाई नोन छुटकारा दे विश्वास थलासुगो युहन्ना दस अध्यायला दस योला ए योला बारी सेवरी दिन नास लावरी जखिन हामुला ना ए थेनिगा दिशे लुई यांगला थेन दे थे छोना मात्र रे यांगला बीबा तामसे हाजी शैतान से गंदा परमेश्वर से यांगला लुई दी पिंशु अद्भुत आशीष का दे यांगबा सेम आला मुला थेन दे थेला लानन छली मुला रंग देन रंगला अबा रंग गुमला संबंध विच्छेद लावरी हाई जीबा मुला शैतान से रंगला विश्वास दा नष्ट लव प्रयास ल मुला थेरंग तसी रंग से रंगला प्रतिज्ञा कर देरी विश्वास लबरी ख्याल सुला शैतान ला आशा सुमुला की रंग से दारेम रंगला लुईला थे निराशाजनक ग्लागा दे दी मुक्ति थाकला सुगो तागे जुन रंग दत्ते समाधान लावरी संघर्ष लावन मुशुला रोमी बारह अध्यायला बारह रंगला आश्रय आनंद लाऊ संकष्टी धैर्य धारण लौ प्रार्थना रे निरन्तर लागि रहो जब परिस्थिति कदे यंगसी सेमलाबा रंग आधामुला यंगसी प्रार्थना लादोला थेन दे थेली छ धैर्य लादोला परमेश्वर से छुटकारा ला प्रतिज्ञा लसुमुला तासे यंगसी यांगला लागिरी परमेश्वरला योजनारी आधारित छु छुटकारा दुई ब्रान्दोला एक पत्रुस पाँच अध्यायला छ त्यो कारण परमेश्वरलाई शक्तिशाली बाहुली दिएर यनी गदे रङदान विनम्र तुल्याउ विनम्र सोगो सो देन रोसे परमेश्वर से उचित दुईरी यनी गदे दा उच्च लसुला भजन संग्रह चौतिस अध्याय सत्र जब धार्मिक निगदेशे पुकारा प्रार्थना लमुला जब परमेश्वर से जन्ममुला थेन दे थेनी गदेला बेनन संकट ज्ञान थेनी गदे दा उद्धार पिन्छु मुला रंगला समस्या गदे दा समाधान विवाह ईश्वर फेरी भरोसा लाबरी ख्यासुगो केन्द्र रंगला शक्ति से सामना लाजीबा समस्या का समाधान लाबा प्रयास आलासुगो ऐसा चालीस अध्याय इकतीस तसई परम प्रभुला आशा लाभगा देता बांग दोषी छा ताला थेनिगा दे गरुड़ रंग फिरी फिरी फैंगला थेनिगा दे छोंगला एन थेनिगा दे ब्लाप्पा आरे थेनिगा दे ब्राला तसई मूर्छा ताला आरे जब रंग हाजिबे परिस्थितिला बारिरी रंगला धेरै धैर्य मावरी थान्सु मुला परमेश्वरला छमला रंगला सम्बन्धरी ध्यान केन्द्रित लसुगो देन रंगसी सामना लसुबा दत्तेला परिस्थिति ध्यान केन्द्रित लबला सट रंगला परिस्थितिला बारिरी परमेश्वरला वचन ज्ञान प्रतिज्ञा गदे स्वीकार लसुगो याङ परमेश्वरला प्यारो सन्तान हिम्बा थेन दे परमेश्वर से यांगला लुइरी पुरान रूबरी छुटकारा बाबरी हसुमला प्रार्थना लसुगो थेन दे धैर्य से रोसे यांगला आवश्यकता गरे पुरा लसुमला बिसी बन्सुगो प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवान विक्टर यम लिखित सन्देश यांगला भाषारी नेन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारेरी रंगला केही प्रतिक्रिया मुसम 01661940 रि सम्पर्क लसुगो हस्त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रङ्गी छङमदानु जयमसी नमस्कार
11: विगत 15 वर्षदेखि निरन्तर तपाईँहरूको सेवामा समर्पित न्यू टिपटप ह्यान्डिक्राफ्ट सिद्धलिक गाउँपालिका एक बैरेनी धादिङ हामी कहाँ विभिन्न स्कूल कलेज संघ संस्थाका ट्र्याकसुट तथा रेडिमेड सामान पाइनुका साथै धादिङ गोर्खा चितवन र नुवाकोट लगायतका जिल्लाहरूमा सामान डेलिभरीको समेत सुविधा रहेको छ प्रोपाइटर रामजी परियार फोन नम्बर 9141867764 9141867764
6: अब रंग फेसु मुला र रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माइथे नला विश्वासी समक बसुगो परमेश्वर से दिनु हो ठोस प्रमाण सहित हावामुला जय मसी तथा नमस्कार स्पार्क माई फेतला स्वागत मुला ना बियोग तामाङ टीका राङदा राङसे लावरी सेम लाभा ताम परमेश्वरलाई इच्छा हिम्बा कि आहिम्बा बिसी पत्ता लगा बरी समस्या ताबन मुला वा परमेश्वरलाई इच्छा आहिम्बा परमेश्वर राङला लुइला लागिरी टीका जबा मुला थे सेम मुला थेराङ तसी याङसे टीका लावरी सेम मुला भन्दा एन परमेश्वर से याङदा टीका लावरी सेम मुला बिसी पत्ता लालन महत्वपूर्ण मुला थेरङ लावरी याङसे याङला व्यक्तिगत भावना गदे यकरी क्यार थान्दोला थेहेन्दे परमेश्वर से चु बावरी टीका सुङमु सुबा मुला बिसी न्यान्दोला याकुब एक अध्यायला पाँच तसै यदि एनी गरी मध्ये हलाइसे बुद्धिला अभाव मुला विषम उद्धार चिता देन अगोसेला ता लासेला परमेश्वर दा थेसे रिगै थेदा पिल्ला परमेश्वर जे याङ ग्याम राङला इच्छा लावरी माइजी विवा आरे जवाब आवश्यक ताला परमेश्वर ग्याम हावा विचार गरी पुष्टिकरण समावेश ताला दुई तिमोथी दुई अध्यायला सात नातिगा बिमुला थे विचार लाऊ तिग्दी विषम प्रत्येक ताम्री प्रभुसे एदा घोष्युमुला चु परमेश्वर ज्ञाम रङसे पिन्बा प्रतिज्ञा हिम्बा यदि रङ हाजीबाई परिस्थितिलाई बारिरी परमेश्वरलाई इच्छा माइमन मुसुला विषम परमेश्वर से रङ द गोभा प्रतिज्ञा लस्युमला लालन क्रिस्चियन गदेछे तिगा लाबरे सेमला मुला बिसी निर्णय लामुला खेलिच्छा थेनी गदेछे परमेश्वर द प्रार्थना लामुला रङसे नोन रङसे लासेला निर्णय लाभ ताम्री परमेश्वर द मलाम पिनबरी बिन्ती लामुला थे ग्याम्री थान्यु प्रार्थनारी परमेश्वर देन यागरकी गुणस्तर दुई बिताप लस्युगो परमेश्वर देन चुला बारेरी ताम लस्युगो खेलिच्छा परमेश्वर जी विवाह ताम याङबरी छोना नम्रा तगाई यदि राङसे नोन टिगा लादोला विवाह बारे राङला सेम परिवर्तन तब मुला विषम जब परमेश्वर जी राङदा नन्बा मुभ भन्दा फरक जवाब पिन्छु मुला रङसे राङदा परमेश्वरलाई जवाब न्यानबरी रोक ल सुमुला राङदान यसुगो चुरी बेनन भन्दा बुद्धिमान हाला हिम्बा किङ्गा हिम्बा वा चु परमेश्वर थेलिच्छा परमेश्वर से राङदा निर्देशन पिन्छु मुला तामदेन दीक्षी चाबा राङला सोच परिवर्तन लाबरी इच्छुक तगै यदि रङसे टिक्दा वा हरङ लसी गोबरी आतानी विषम एन परमेश्वर से इतिहास नै बारम्बार अनशुभा मुला कि जब मिगदी से परमेश्वरले इच्छा अनुसार गे लमुला परमेश्वर सेमला परिवर्तन गरे परिणाम गरे प्राप्त लबरी अलौकिक माध्यम गरे पिन्छु मुला युहन्ना तीन अध्यायला सात तसै थे बुद्धि स्वर्ग ज्ञान हामुला थे नाच्छा शुद्ध तामुला तब थे शान्ति प्रिय कोमल विचारशील कृपा पूर्ण देन जब फल्से प्लिङबा पक्षपात रहित देन कपट रहित तामुला जब रङसे हाजीबाई नो निर्णय लावरी लगभ तसुवा मुला विषम रङ चुला बारे शान्त महसुस लसुला यदि रङ चिन्तित अलमलरी वा निराश महसुस लाभन मुसुला विषम थे निर्णय रे पक्कै नोन लाला इच्छा अरे विवाह घोषुगो वा परमेश्वरला इच्छा नङरी मुला थेन्जे रङ दत्ती दोना थे ग्यारी थे ग्लारी दोषु मुला रे जहाँ रङ द्रोरा सेमलाबा परिणाम गदे बाबरी भरोसा लस्युमला भजन संग्रह 145 अध्यायला 19 परमेश्वरला डर मान्देव गदे बेनामला मनोरथ परमेश्वर से पुरा लस्युमला प्रभु जे थेनी गदेला प्रार्थना थेन्स्युमला थेहेन दे थेनी गदेदा बजबला लस्युमला जब रङसे आज महत्वपूर्ण निर्णय किन्स्युमला तब दोना ब्रन्स्युगो जब दोना रङ थेला बारे शान्त तासेला आरे हाजीबाई नोन दबाव देन चिन्ता दाचु निर्णयला लिचा प्रभु मुसिरा विवाह दृढ विश्वासी प्रतिस्पादन लावरी थापिन्छुगो रङसे लब निर्णय कदे रङला भावना से आहिन्बा परमेश्वरलाई इच्छा से चलाबला सुगो खेलिचा जखिन रङला परिणाम रेबा तबा सुनिश्चित ताला यदि रङ शान्तिरी आसुला विषम लिच्छा हटपला सुगो राङला थेराङमा गे लाबरी वाद्य थलाप सुगो जुन राङला लागिरी परमेश्वरलाई योजनारी आरे थे तामगदेशी राङदा भविष्य पीडा देन निराश जेखेन बाला परमेश्वरले इच्छा मैसुगो थेन दे थेग्याम राङला बेनन इच्छा गदे काप्सेला प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवान भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी नेन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारेरी राङला केही प्रतिक्रिया मुसम 01661940 रि सम्पर्क लसुगो हस्त त्यो समय रिङ बिदा दाजी राङनी छङमदानु जयमसी नमस्कार अब रङ फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो नाचे दम्बा नादोला जयमसी तथा नमस्कार स्पार्क माई फेथ ला अङ्क 8 तथा नला विश्वासी चमक बसिखाऊ न बियोग तामाङ हरेक सोरी जब याङरे याङसी यागर्खी महत्वपूर्ण निर्णय लादोला तिग याङ नियन्त्रण लाबरी हाम्बा ताग्दे ला बारे चिन्ता लाब छनोट लाला वा परमेश्वरसी याङदा पिनबा अद्भुत आशिष कदेदा लागे थुजेसी पिनबा ताम्रे ध्यान केन्द्रित लाब छनोट लाला भजन संग्रह 118:24 तिनीला दिन परम प्रभुसे सृजना तब हिम्बा चुरे याङ आनन्दित हिम्बा थेन दे न्यू हरेक छोरी नच्छा परमेश्वर से राङदा पिनबा आनन्दला बारिरी सोच्थ्यो राङला जब रोग अदेला बारिरी सोच्थ्यो राङसे चावारी हम्बा चाबसेला बारिरी सोच्थ्यो राङसे कनबारी हम्बा क्लानबा बारिरी सोच्यो राङला फोबोफिला छानेला बारेर सोच्थ्यो याङ बेनान्से याङला विश्वासला परिचय किन्बा कठिनाई देन कष्टका दे अनुभव लाभमुला याङ राङदान यहीबारी आहाम तिग्दा परमेश्वर याङदा थे कष्टका दे सहला बारी अनुमति पिन्छुला थे कष्टका देसे याङदा नेमुला थेन्दे याङला तिन दोप तमुला जब दोना याङ थे अजब तमगा देरी ध्यान केन्द्रित लसुमुला याङ दुखा देन पीडा से प्रिङबा लुई बिटाप्ता लला तसै याङ से अर्को ग्याम एन अपना